जिसमें अमृत ज्ञान है। माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए।

अवर ना सुजै दूजी ठहर हार परयो ता द्वारी लेखा छोड़ अलेखा छूट हम निर्गुण लेहो उबारी सद बख सिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाशा परयो

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Waheguru, Waheguru Ji. Sare milke bolo ji. Ek Oankar Satna Karta Purkh Nirbhau Nirvai अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंद सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशा गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सतपुद मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्रा गुरुदेवा जुगा जुग जुग गुरुदेव मंथर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो सलोक आदि अंत पढ़ना सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिख दुख संबंधी नूर अरसहु कुर सहु चटिया तुद जिते सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसी जई बिरनावै पत जाए अष्टपदी।
1: दस बसूले पाछे पावै,
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावै,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ठाको कीजे सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हूं मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सोक नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कश बहो शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे,
0: और उसका विश्वास न होवे,
1: बस्ते सागे रखे,
0: की आज्ञा मन नै मथ,
1: उसते चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: अनक भांत माया के हित,
0: सरपर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपटर होत अंधे अंधार,
1: घटाऊ से जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप लय लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: और सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत विकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: बिरथी साध की आरजा,
0: साच बिना कह हो सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुख आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाए,
0: एक बिना ज्यो खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेज अंधे कट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीन,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक निजन चरण पराता,
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन है,
1: आपे आप आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप से अनप सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लए लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप

0: देव अष्टपति
1: जे प्रसाद छत्ति ही अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जे प्रसाद सुगंधित तन लावहे
0: जिसको सिमृत परमगत पावे
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदिर
0: चाहते आये सदा मन अंदर
1: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरोत सरसना
1: जे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ते आये ते हमन जोग
1: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
0: से त्यागत अवर लुभावे
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस का विजय
1: जे प्रसाद तुल सब को मान
0: मुक्ता को जस रसन बखाना
1: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
1: रब जी जपत दरगाह मान पावहे
0: नानक पत से ती कर जावे
1: जे प्रसाद अरो कंचन देही
0: निबला बोत सराम स्नेही
1: जे प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन साल साल सिमरो प्रभु उच्चे
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
0: नानक ताकी भगत करे
1: जे प्रसाद अभूखन पहरीजे
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे
1: जे प्रसाद असवर सवारी
0: मन तिस प्रभु कभु न बिसारी
1: जे प्रसाद बाग मिलख तना
0: राग प्रे प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याय
1: इसे ध्याय जो एक लख
0: यहाँ उहा नानक तेरी रख
1: जे प्रसाद करे पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: जिस प्रभु को सास सास तारी
1: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: जे प्रसाद तेरी नीकी जात
0: प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: जे प्रसाद तेरी पत रह
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: जे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
0: जे प्रसाद पेख है विस्माद
1: जे प्रसाद बोले है अमृत रसना
0: जे प्रसाद सुख सहजे बसना
1: जे प्रसाद हस कर चल है
0: जे प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जे प्रसाद परम गत पावहे
0: जे प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जग
1: जे प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप
0: जे मन मूड तू ताको जाप
1: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: जिसे जान मन सदा हजूरे
1: जे प्रसाद तू पावे साच
0: जे मन मेरे तू तास्यो राज
1: जे प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाई जपे सोनाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपाते होए प्रकाश
0: प्रभु दयाते कमल विकास
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दयाते मतूतन होए
1: सर्वनिधान प्रभु तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हु लया
1: जब जत लाभ हो तित लगे हैं हर नाथ
0: नानक इनके कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुखता होए
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग मल सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत नबेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एको ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथू पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किस्सो नी बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हों ताप
0: साध के संग तो जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पटाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कभू पावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह
0: साधु के संग अजर सह
1: साध के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग महर पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग शोभा सुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्प थान गम
0: नानक साध का संग सगल जनम
1: साध का संग नहीं कशकाल
0: दर्शन भेट होत निहाल
1: साध का संग कुलूकत हर है
0: साध का संग नरक पर हर है
1: साध संग इहां उहां सुहेला
0: साध संग विश्रत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक कुदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाउ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मनते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग करकट दीठा
1: साध संग भई आज्ञाकारी
0: साध संगत भई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने है
0: जिता सुन तेता बखियान
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूचते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख
0: कस बिन कोए
1: नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमल लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: जो बसता को खुद को चिंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो पाप का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भय
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी का कर सदायानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदादेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी अपरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या ना ही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न देखे नेत्र
0: साध के टैल संत संग हेत
1: कर्ण सुने काहू पे निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विद्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: जिसन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बांछे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीव है
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नयावे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने स्थूल
1: चौवर ना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदया देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: चौवर नाम जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितया न पाईया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निट निट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरत तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताये साई जुगत
0: नानक को प्रख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे कर्म करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारा वार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परक ਅਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਵੀਰ ਕੇ ਸਰੋਤੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੋਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵਿ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ
0: ਨਾਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਾਈ ਅਭਿਮਾਨੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋਤੇ ਤਿਤ ਲਗਨਾ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬ੍ਰਿਕ ਨਿਪਜਾਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਆ ਸੂਰ ਨਖਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸ਼ਰ ਛਤਰ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮ ਸਾਤਕ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤੇ ਅਰਸ਼ਾਸਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪਸਾਚ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ
1: ਸਾਬੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵਹਿ ਮਰ ਹੈ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸਹੀ ਖਾਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲ ਤਖ ਪਾਹੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾ ਚਿੰਤ
1: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬਹਿ ਰਾਗੀ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ
0: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ
0: ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ
1: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ
0: ਕਈ ਜਗਤ ਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ
0: ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਤ
1: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ
0: ਜਿਨ ਹੋ ਵਤਿਆ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਦੇਤੇ
0: ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਇੱਕੋ ਨੇਤਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵ ਹੈ
0: ਅਮਰ ਭਏ ਸਭ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ
0: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ
0: ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ
1: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਨ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਪ ਉਤਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀ ਕਿਸ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨ ਉਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸ੍ਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਕਿਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰਿਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
0: ਆਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਸਹਾਕ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਉਬਕ ਆਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਦੀਆ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ
1: ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ
0: ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरक पाति होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत भ्रष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भव जौन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस
0: स्वर भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदा आप हंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले प्रथारे
1: अनक तपस्या करे हंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्प की रेन जहाँ का मन होए
0: कौ नानक ताके निर्मल सोए
1: जग लग जाने मुझ ते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लग को उठता वे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न पिनसै आवे न जाए
0: नानक सभी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पिन कहो किस होए
0: अंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभ स्वामी
0: गुर प्रसाद के नैबखयानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखयानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आर्जा कटै
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटै
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे हीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करै
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख भवै
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवै
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छलै
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावै ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावै ता लए मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइये
0: संत का दुखी उजड़ पाइये
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावै ता लए उबार
1: संत का दुखी इउं बिललाए
0: ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटै अकेला
0: ज्यों बुआर तिर खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्त निंदक का तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावै सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइय
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय
1: संत के दुखी की पूजै न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टै कोई
0: जैसा भावै तैसा कोई होए
1: पया कीर्त न मिटै कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिस को नमस्कार
1: रबी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्याहो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੀਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਇਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਰੰਕਾਰ
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਬੇਖਾ ਪੁਰਖਾ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੁਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਅਜਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ

निरुक्त प्रभा सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त

0: सिद्ध ना हो है नचन को दन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी
1: नौ तरन निरंकार जाइए जियो पिंड सब दिखता दे कार्य अगवाइया जे लोड़े चंगा अपना कृपनो नहीं सताइए जे जरमाना पर हर है जरवे

0: पाई है पड़पड़ गड़ी है खात पड़ी है जेते वर्ष वर्ष पड़ी जेते मास पड़िया जिते आ रे जा पड़िया जिते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया किता कड़िया बहुत तीर्थ पवेया।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सेना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ पपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हुए खार कूड़ कूड़े निहु लगा विसरिया करतार किस नाल किचे दोस्ती सब जग चरण हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनती दुदबाज कूड़ कूड़ मला फैला
1: सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मर उतरे तन करे हशत होए सच ता पर जानिए।

0: ब्रह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं ए शब्दं जे को जाने पियो नानक का दास है सोई नरेंद्रियो महला दूजा।
1: एक कृष्णं सब देवा देव देवात आत्मा आत्मा वासुदेव से जे को जाने पियो नानक का दास।

बन में रंग किया, कल में वेद अथर बनाऊंगा, नौ कदाई अलहो भया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, त्रुक पठानी अमल किया, चार

0: हम बारक तुमरे तारे।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वशल कृपा निधान जागत जोत चबर शतर और तख्त के मालक राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु समर्थ सतगुरु प्रतख सतगुरु पूरा सतगुरु सूरा सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपार रहमत मेहर बख्शिश का सदका है। अमृत वेले दियां अमृतमई दातां नाल सतगुरु जी ने नवाजिया है। आप सतसंगियां ने गुरु महाराज के दरबार दियां हाजरियां भरियां हन। अमृत वेले तों ही धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने प्रकाशमान हो के पवित्र दर्शन दीदारे बख्शे हन। अलाही हुकम फरमाया सतगुरां ने पंज बाणियों दा नितनेम वाहिगुरु सिमरन श्री आसा जी के वार दा संपूर्ण कीर्तन उपरंत गुरु चरण दे विच संगति रूप विच अरदास बेनती होई है। अरदास दी सेवा सतगुरां ने बख्शिश कीती है। गुरु घर दे हजूरी अरदासीए सत्कारयोग सिंह साहब भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी जदों अरदास हो रही सी ते इस तरह महसूस हो रहा सी जिवें सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे खड़े आ, क्योंकि आप हर रोज लाइव तो ये आवाज आप सुनते हैं सतगुरु मेहर करन। इत्थे बेनती करदे आं कि सचखंड हरिमंदर साहब जी की मर्यादा हरेक गुरु घर नालों वक्खरी है। उत्थे पंज अरदासीए सत्संगियो अरदास वास्ते उन्हां दी ड्यूटी केवल उही है। पंज चौर बरदार जिहड़े चौर साहिब की सेवा ही करदे आ, उत्थे मेरे अर्गा जां होर कोई भी अंदर सेवा नहीं कर सकदा। सिंह साहिबान उन्हां ने ताबिया महाराज सच्चे पातशाह जी सजणा दा सत्संगियो, सो इस तरीके नाल उत्थों दा जिहड़ा सारा विधान उत्थों दा सारा जो नियम है उह लिखती है। एक एक चीज उत्थे जिहड़ी है ये भाई साहब भाई मनी सिंह साहिब जी द्वारा लिखी हुई है हुंदी है। दूजी बेनती उत्थे सच्चे पातशाह जी दी ताबिया विच होर कोई भी नहीं बैठ सकता, भाव कि जिस सिंह साहिब जी की नियुक्ति हो जाए अकाल तख्त साहिब दे उत्ते समागम हुंदा है उत्थे अरदास हुंदी है उही सिंह साहिब उत्थे बैठ सकदा, जिहड़ा रिटायर हो जाए वह भी नहीं बैठ सकदा, जिहड़ा सिंह साहिब उत्थों सेवा मुक्त हो जाए वह भी नहीं बैठ सकदा, उत्थे केवल जिहड़ा मौजूदा सिंह साहिब जी वह बैठ सकदे। किन्नी भी सेवा किसी भी गुरद्वारे विच हैड ग्रंथी दी कीती होवे भावे 20 साल कीती होवे जदों उत्थे नियुक्ति हुंदी सीधे उन्हूं नहीं बिठाउंदे ताबिया। पहला जिहड़े सीनियर सिंह साहिब ने वह मारे दा प्रकाश करदे, प्रकाश की विधि उत्थे वक्खरी है। पंज रमाले सुख आसन दे सच्चे पातशाह जी दे आ, कला कला रमाला जिहड़ा महाराज दा सत्कार नाल उतारना उत्ते अतल फलेब आदक जिहड़ा है वह लगातार लाई जाना, जिहड़े पट साहिबान दे सवीए प्रेमी पढ़दे ने, और जिहड़ा नवा सिंह साहिब जी की नियुक्ति होई नवी उन्हां पंज चार दिन लागे बैठ के वेखना कि की करदे, एक एक चीज उत्थे जिहड़ी एन प्रोपर उह करी जांदी। इह नहीं कि जिहड़ा भी आया ते ताबिया बैठ के सुख आसन करता हुक्मनामा लै लिया, उत्थे नहीं इदां। उत्थे नवा सिंह साहिब नियुक्त हुंदा भावें उहने 20 साल ड्यूटी कीती होई किसे गुरद्वारे, पर उन सीधे उत्थे मारी दी ताबिया च नहीं बिठाउंदे। पहला लागे बैठणगे दो चार दिन, सारा कुछ वेखणगे, सीनियर सिंह साहिबान सारी मर्यादा करदे ने, फिर उन्हां नूं उत्थे बिठाउंदे ने हुण तुसीं करो।

कठा नहीं, प्रसाद अलग है। वो जो एक है वो अंगार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, वो जो एक है वो करता है, वो जो एक है अपनी कृत देश व्यापक है, वो जो एक है भय तो रहत है, वैर तो रहत है, वो जो एक है समय तो रहत है और जन्म तो रहत है, मूर्तिमान है और उसने अपनी साजना आप की थी, वो एक सहभंग है, वो एक गुरु है। गुरु ज्ञान, गुरु प्रकाश, वो एक ही ज्ञान स्वरूप है, वो एक ही प्रकाश स्वरूप है, वो गुरु है। बगौर मुताला करिए, जिथे सब कुछ ईश्वर तो आया है, ज्ञान भी ईश्वर तो आया है, परमात्मा तो आया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि गुरु वेदा ने भी परमात्मा नो ही मने है, वो ही गुरु है। अगर मोहम्मद साहब कहते ने ये आयता मेरे ते नाजल हुई ने, मैंने उच्चारण की, खुदा दी तरफों नाजल हुई ने, तो इहदा मतलब ये ज्ञान खुदा ने दिता, फिर थोड़ा ते ना होया, क्योंकि नाजल जो हुई अगर नाजल हुई ने तो फिर ये ज्ञान मोहम्मद साहब का नहीं है, ये तो खुदा का हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने, बोल मेरे नहीं ने, जैसे मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जैसे खसम दे बोल आए ने, मैं कह रहा, जैसे जैसे खसम दी बाणी आई है, मैं जगत दे सामने रख रहे हैं, मेरे नहीं है। ये बोल सारे खसम देन तो ज्ञान सारा परमात्मा का, ईश्वर का है। और ये ज्ञान परमात्मा तो आ रहे है तो फिर परमात्मा गुरु है। तो गुरु नानक देव जी कहते, हां मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही है, अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलिया सोई जियो, यही मेरा गुरु है, इसे तो ही मैं ज्ञान लिया। कंधार दे एक सूफी संत ने गुरु नानक ते प्रश्न किया, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है, इतना ज्ञान तुसी कितों ले, किस कोल पढ़े है, किसने सिखाया है। रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है। तो सतगुरु एकदम कहते ने, खुदाए मन, मेरा रहबर मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा मुर्शद मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा गुरु मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। जन्म साकी दे बोलने, रहनुमाए तो कीस्त। कंधारी सूफी संत, कंधार देच एक बहुत वड्डा मकबरा है इस सूफी फकीर दा, गुरु नानक देव जी महाराज सऊदी अरब इराक दी यात्रा दे समय इसे ही कंधार तो लंघ दे, इसे ही सूफी फकीर दे मेहमान रहे ने 15 दिन। इसने प्रश्न कीता है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है, कौन है थोड़ा गुरु। खुदाए मन, जैसे छोटे शब्दां च थोड़े बोलां च उस फकीर ने प्रश्न कीता है, थोड़े ही बोलां च सतगुरु जवाब पे देंदे ने। रहनुमाए तो कीस, खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर और कोई रहबर नहीं, मैं सारा ज्ञान खुदा तो ले है। असी पैगंबर गुरु अवतार उन्हां नूं कहंदे आ जो परमात्मा दे ए बोल सिद्धे पकड़ लैन, सिद्धे ही पकड़ लैन, उन्हां दी पकड़ दे सिद्धे आ जांदे। ते जो अवतारां ते गुरुआं दे राही पकड़ के परमात्मा तक पहुंचन, असीं उन्हां नूं भगत कहिंदे आ। ये भगत ने, इन्हां ने अवतारां दी बाणी सुन के, अवतारां कोलों उपदेश लै के, पैगंबरां कोलों शिक्षा लै के, उन्हां दे बोलां नूं जीवन दा आधार बना के परमात्मा की प्राप्ति की थी भगत। इस सीधे परमात्मा दे बोल नहीं पकड़ सके, जिन्होंने पकड़े सन
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

मन के इपार उतरे, जो इस तरह सफलता नु प्राप्त होया सी उन्हां नु कहने हैं भगत। इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास सी कि अवतार दे हर बोल देते भरोसा कीता, पैगंबर दी हर शिक्षा देते विश्वास कीता, गुरु दे हर बोल देते भरोसा कीता। और उस भरोसे ने उना बोलां दे सदके पुचा देता भगत। पर ए बोल सिद्धे जिना दी पकड़ दे चा गए खला दे च, और ए बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सद बोलन था, हर वक्त परमात्मा तो ए बोल आ रहे ने, हर वक्त गुरु नानक दी पकड़ दे चा गए, कृष्ण दी पकड़ दे चा गए। और महाभारत दे मैदान जंग दे ये जो गीता है, ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे जंग दे निकले है। अर्जुन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उन्हां बोलां नूं कहिंदे ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल। ते परमात्मा अमिट है, इत्थे कह दे कृष्ण अमिट है, शरीर ते सुपना सी रुखसत हो गया, वो बोल अमिट ने। वाकई गीता अमिट है, क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, और वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन, भुलेखा पै गया अगे चल के, ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द जोड़े है ऋषि वेद व्यास ने, क्योंकि गीता लिखती रूप देच उन्होंने जगत दे सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जहा मुगलता पै गया। परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े, कि कृष्ण दे इना बोलां नू लिखती रूप देंदे ने व्यास, तो थोड़ी अपनी रंगण चाड़ गए। कुदरती गल है, अपनी रंगण चाड़ जान गए। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक कवि एक कविता बयान करे ते हुण कोई उस दे अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाड़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नू कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ते भी मैं अर्ज कर दे। ते एक आम साधारण कवि दी कविता दी हू बहु उसे ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती, तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले, अर्जुन नू समझाया, हू बहु किस तरह लिख सकते सन व्यास, तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगण चाड़ी है, उथे उथे एकदम गल प्रगट हो जाती है, नहीं कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त दा अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनू मैदान जंग देच भी कहण दी जरूरत है, ए अर्जुन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है, तू जो ये कहना है, ए मेरा गुरु, ए मेरे भरा, इन्हां नूं मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है, तू कौन है मारन वाला, तू नहीं मार सकता, तू स्वभाव दा क्षत्री है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा तां भी तेरे दिल दिमाग देते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी, ये करना ही पड़ेगा, तू करता नहीं है, निमित्त है। और अपना करतापन एक पासे कर दे, इस जंग देच भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, युद्ध भी तेनु समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा कर्तापन तेरे नाल है, तो तेरा त्याग भी तेनु परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेनु ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा कर्तापन मौजूद होवेगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जुन दी पकड़ दे च आ गई, उन्हें सुटे शस्त्र फिर चुक ले, प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ दे चाह गई, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलां। जो परमात्मा दे बोलां नूं सिद्धा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे बोल अवतारां दे राही पकड़ सके भगत, श्रद्धालु, संत, भगत, अवतार
जिस मात्रा दे जगत दे चौंदे ने उंगलियां ते गिन सकदे आ भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे छोए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। जमीन दे ते हर वक्त अवतार नहीं आउंदे, अवतार उस समय आउंदे ने। कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाहणे असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो ओ जैसे बहुती गर्मी बारिश नु जन्म दे देंदी है, इस तरह दा घोर पाप किसे अवतार नु जन्म दे दे। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा ते जगत नु सुनांदा। और मैं यह भी अर्ज करदे हां, किथे जगत अवतारां दे बोल नु पकड़दा पूरा, थोड़े जिहा फिर भी पकड़दे नु दे नाल रोशनी हो जांदी, उसने नाल काफी ठरम्मा हो जांदा। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखदे ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, दसम ग्रंथ, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि विच अरिष्ट होवे, भाव गलत होवे, कुछ भी सही ना होवे, तो फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख दे बचना नु पकड़ता है और जगत दे सामने रखता है। अवतारा दे राही गुरुआ दे राही जिन्हां दी पकड़ दे चा जांदे ने, वो भगत, वो गुरमुख, वो ब्रह्म ज्ञानी। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है, तो गुरु नानक कहंदे ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं, ईश्वर ही गुरु है। वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नु जिस ढंग नाल समाप्त कर देने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने प्रसाद है। गुर प्रसाद, प्रसाद और गुर, ये दो मजमून अपने आप विच इस तरह देने, थोड़ा जिहा मैं इन्हां नु खोलना चाहना ताकि ज़हन विच ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है, देहदारी गुरु चाहिदा है कि नहीं। कौन दसे कदी देही भी गुरु आउंदी है, अज है ते कल नहीं। इहदा मतलब गुरु मिट जांदा है, गुरु मर जांदा है, ते जो मर जांदा है वह गुरु सदीवी जीवन थानू किस तरह देवेगा, किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है, गुरु ते ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम बेभूत लगाओ। किसे देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है, उपदेश नो हिरदे च वसाओगे कि उस देही नो। जे आखो देही नो हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं, की लोड़ है। ते जे उपदेश नो हिरदे च वसाना है ते ताई हिरदा बदलेगा, तां ते फिर देही दी कोई कीमत ही ना रहेगी। देही दा उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन ते कपड़ियां दी कदर, कपड़ियां दा सन्मान, बे फलाने दे कपड़े ने, फलाने दे वस्त्र ने। जिवें रुमालियां दा असी सत्कार करदे आ, गुरु ग्रंथ साहिब दे रुमाले ने। पर हुण मैं अर्ज करां, ये अखर ये भी रुमाले ने, कागज ये भी रुमाले ने। अखरां दे च जो ज्ञान है यही परमात्मा। ओरे दे चों गुरु नूं कढ़ना पैंदा, मक्खण शाह लबाणा बनना पैंदा। गुरु ते हर वक्त बोले च, ये भी मैं अर्ज कर दे। बाई दे दारी गुरु बार बैठे सन ते हजारां लोग भुल जांदे सन, उन्हां नूं मत्था टेक के वापस हो जांदे सन। तसल्ली नहीं आउंदी सी किसे दी। मक्खण शाह लबाणा आया, इहदे कोल अख सी, कहिंदा रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसे कोल नहीं दिखाई दित्ते। तो चलो ये साधक होणगे, संत होणगे, ये अवतार नहीं ने, ये नहीं ने, ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे,
ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਭੋਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਰੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਨ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਭੋਰੇ ਚ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਲਾ ਧੋਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭੋਰੇ ਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਚ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਧਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਧਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਬੋਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਣ ਪਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਲ, ਬੜੀ ਗਾਲ ਨਾ ਗਾਲ ਦੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ।
मेहनत कर करके एक कोई ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा, प्रयास कर करके एक कोई पता चलेगा एक गल दा कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा, वो जद मिलदा उदा प्रसाद, वो जद मिलदा उदी रहमत उदी कृपा, साडा कर्म नहीं उदी कृपा, साडा प्रयास नहीं उसका प्रसाद, साडी मेहनत नहीं उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है, इतनी मैं मेहनत करांगा मिल जाएगा, किसी नू भी मिल जाएगा, फिर परमात्मा अमुल नहीं है। फिर ये शब्द कहने बनते नहीं, कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समा, तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है, मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है, मेरा अमृत वेले दा उठना तेरा मुल नहीं है, मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप करना तेरा मुल नहीं है, तीर्थां दा इशनान दान पुन सेवा ये तेरा मुल नहीं है, राम राम दा रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले है मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद, पर जद मिले है प्रसाद ही है, जद मिले है उदी रहमत ही है, तो मेहनत करने की की लोड़ है। यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता, मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनों इस तरह कहते हैं, गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नहीं मिलिया, सेवा नाल नहीं मिलिया, दान नाल नहीं मिलिया, पुन नाल नहीं मिलिया, कोई दान करोड़ां दा उसकी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं, नहीं मिलता, ना कीते जप नाल मिलदा, ना दिते दान नाल मिलदा, ना कीती सेवा नाल मिलदा। फिर किस तरह मिलदा है? वो मिलदा है अचनचेत। गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता, अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उदा प्रसाद, उदी बख्शिश, उदी रहमत, मेहनत नहीं उदी रहमत। आया ये रहमत आखिर होंदी होवेगी, कोई ढंग ते है, कोई तौर तरीका ते है। इन्हां गुंजलां नूं गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोले है, मैं कल आप जी दे सामने रखण दी कोशिश करांगा, और समय नूं मुख रखदे होए इंज कह लो कल समाप्ति कर देंगे। उंज ये मूल मंत्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी सारी बाणी मूल मंत्र दी व्याख्या है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ इंज कह लो मूल मंत्र का टीका ने, और कुछ नहीं। ईश्वर के सारे बुनियादी गुण मूल मंत्र दे छा गए ने, वो एक है, वो ओंकार है, उस उत्पत्ति पालना नाश हो रहे, वो एक सत है, वो जो एक है उसका नाम है, उसे दा ही नाम है, अमिट है, बाकी किसी का नाम नहीं, सब नाम मिट जाते हैं, समा पा के मिट जाते हैं। वो जो एक है वो ही करता है, और जो एक है अपनी कृत दिच बैठा है, अपनी कृत तो वख नहीं है, वो जो एक है उसके स्वभाव दिच भय नहीं है, उसके स्वभाव दिच वैर नहीं है, उसकी होंद दिच काल नहीं है, समा नहीं है, वक्त नहीं है। वो जो एक है बकायदा मूर्तिमान है, और वो जो एक है उसनु किसी ने बनाया नहीं अजो नहीं है। वो जो एक है सैभंग है, अपने आप तो आप ही विस्तृत होया है, अपना पसारा उसने आप ही कीता है, आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचे हो ना। वो जो एक है वही गुरु है, वो जो एक है वही प्रसाद। इस सारी व्याख्या उस एक दी, फिर सारे गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी उस एक दी व्याख्या, दुनिया दे सारे धर्म ग्रंथ उसकी व्याख्या, जेडे मूल गुण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र दे बयान कीते ने, गुर प्रसाद, इसका थोड़ा जहा खुलासा कल आप जी दे सामने रख के
इस दौर दे जो आप जी नाल संयोग बनिया दो हफ्तिया का कल जो है समाप्ति करांगे। रोज आप समा कटते रहे सतगुर रहमत करन कि गुरुद्वारे आन का ख्याल रोज आवे थोन। मैं इतना अर्ज करदे हां जिवें आदमी पुत्रां कोल बैठता है, मित्रां कोल बैठता है, पत्नी कोल बैठता है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठता है, जैसे मित्रां कोल बैठते हैं इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जिहा मैं अपने अनुभव के आधार से कह दिया, नहीं कीर्तन हो रहा तां भी ना सी, बैठना भी लाभकारी। इतना भाव होवे कि असी गुरु नानक दे कोल बैठे, असी कलगीधर दे कोल बैठे, ये बैठना भी लाभकारी हो जाएगा। सुनना तो लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन दे भाव इस तरह के जो है बनन। खैर, बाकी विचार कल तुहानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है। और वो प्रसाद है, उस दे च करोपी नहीं है, उस दे च सराप नहीं है, वो जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसियां सजावां देंदा है, ऐसियां करणियां सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं, ये भी मैं अर्ज कर लेना। ना जगत किसी नूं कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा, साडे अपने लक्षण ही सानू सजा दे देंदे, साडी अपनी करनी ही सानू सजा दे देंदे, असी अपने कीते करके ही जो है दुख पा लेंदे हां। परमात्मा दुख देने वाला नहीं है, अगर दुख देने वाला है तो फिर उन्हें रहीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें करीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें रहमान कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें प्रसाद कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें कृपालु ते दयालु कहने की लोड़ नहीं है। वो तो इतना दयालु ते कृपालु है, इतना प्रसाद है। ईरानी सूफी संत हाफिज कहते ने, सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा 80 साल दी उम्र च इसने ए बोल रचे ने। कहिंदा तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रखिया, 80 साल दा ते मैं हो गया, ते 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, ते जे बाकी होर तू मैनू 20 साल दी जिंदगी दित्ती ना ते मैं गुनाह करांगा, पुन नहीं करने, पाप करने। सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, एक फकीर दे मुंह ये बोल चंगे नहीं लगते, पर फकीर बड़े निराली बिरती दा फकीर से। ईरान दे जितने फकीर हुए ने उन्हां दे च एक चोटी दा फकीर है। उंज उस धरती ने बहुते फकीर पैदा कीते, शेख सादी सी, उमर ख्याम सी, फिरदौसी उत्थे ही होया, हाफिज जो है उत्थे होया, शेख सादी उत्थे ही होए ने, शमस तबरेज उत्थों ही आए सन, सरमद भी उत्थों ही आया सी। इस तरह के बहुत सारे चोटी दे सूफी संत उस जमीन ने पैदा किए, उन्होंने ये है हाफिज। जिस तरह हिंदुस्तान की मिट्टी ने ऋषि पैदा किए, मुनि पैदा किए, ज्ञानी पैदा किए, भगत पैदा किए, संत पैदा किए, अवतार पैदा किए, ईरान की मिट्टी ने कुछ फकीर पैदा किए, सूफी संत पैदा किए। उन्होंने हाफिज का अपना एक खास नाम है। कहिंदा सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा जे 100 साल तक मैं जिंदा रहा, पिछली जिंदगी ते मेरी गुनाहां च बतीत होई है, अगे होर भी गुनाह करांगा, 100 साल तक करांगा, अगर तू 100 साल दी मैनू जिंदगी दिती, क्यों ऐ खुदा तू ते मेरे कदम कदम ते इम्तिहान लैना, मैं फिर तेरा इम्तिहान लेना है। कि ता जुरम मन अस्त बेश या रहमत तो, मैं एक पलड़े दे च रखांगा अपने 100 साल दे गुनाह,
ਤੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਬੋਝਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਰਹਿਮਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕਾ ਜਬ ਦੇਖਾ ਹਸ਼ਰ ਨੇ, ਚੀਖ ਉਠਾ ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿਨ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਲਟ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਾਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਖਵਾ ਹਮ ਕਰਦ, ਐ ਖੁਦਾ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਐ ਖੁਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪੋ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਜਪੋ। ਅਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਰੱਖ ਪੁਰਖਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋ ਦਿੰਦੀ। ਲਖ ਮੜੀਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਲੜਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਨਕ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਉਸ ਤੇ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय

एक हैं फिर एक हैं। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान हैं निधान हैं अनेक हैं फिर एक हैं। निधान है तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहप्पन दा खजाना है, लेकिन अमान है तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसे भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने जो बयान किया, सत चित आनंद, वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़े आवे तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो आरंभ होती है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो यह ब्रह्मवाक होके प्रगट होया। गुरु नानक दे कंठ तो यह पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी का, पता है कि एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नु समझ जाए तो तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए तो पवित्र है, नहीं तो सदा ही नापाक, गंदगी दी ढेर, गलाजत नाल भरे होया मैला। महाराज शुद्धता मनते ही नहीं, एक नु समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ये खुद भी अपवित्र, एदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, एदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा दे चवी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है,
ਹੋਰ

0: ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲਾ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ, ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਰਕਜ਼, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਅਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ, ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਜਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, तो शायद मथा टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मथा टेकना भी पखंड है। शीश निवाहिए क्या थिए जां हृदय कुसुदे, कि तेरा मथा टेकना की मैंने रखदा है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं, ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीश निवाहिए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख दी तर्जे जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जांच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जांच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारा की मूर्ति होर की है, ये भेंट करने की जांच आ जाए। और जिस दिन ये अपने विचार भेंट करता है, गुरु अपने विचार इसनु दे देता है। मनुख के विचारां विच लोभ है, गुरु के विचारां विच संतोख है। मनुख के विचारां विच काम है, गुरु के विचारां विच राम है। मनुख के विचारां विच हंकार है, गुरु के विचारां विच निरंकार है। मनुख के विचारां विच क्रोध है, गुरु के विचारां विच दया है। मनुख के विचार विच मोह है, गुरु के विचार विच प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चली दी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिरी ना चारां दा मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहिंदे ने, बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस ऊपर ले रखियो गुमान। है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। ते जैसे असी वक वक रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नु नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्म ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे दिता। किसे नु गोरा, किसे नु काला, किसे नु सांवरा, किसे नु लाल, किसे नु जर्दी मायल, किसे नु गेहुआ रंग, एक रंग नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेका रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है। रंग सबे नारायण है, जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है, मैं अर्ज करा तन की है। तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े होया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन अहं है, ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤਨ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਮਿੰਜ ਕਲੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚਣੀ, ਚਿਤਵਨੀ ਤੇ ਅਹੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਗ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤਕਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤਕਰਨ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਬੁੱਧ। ਤੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਚਿੱਤ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਹੰਗ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਗ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਟੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਸੱਚੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ। ਤਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਾਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ, ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੇ ਅਹਿਨਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ। ਭਗਤ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਤੇ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਾਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਤਾਣੇ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਟੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਦ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मनुख दे विचारां दे च मनुख दी सोचनी दे और मनुख दे चिंतन दे च काम है, लोभ है, अहंकार है और की है, कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचनी नूं, सोचनी दे च की है, और पढ़ो अपनियां यादां नूं, यादां दे च की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न दी जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे लीन है मन नो समझण दी कोशिश पिया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा तिन भी तन में मन नहीं देखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े स्याणे सन, बड़ियां शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दियां गहराइयां नु समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेणगे, किवें कर लेणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और ओह कह रहे जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा ओही कह रहे जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं देखा। आम बंदे मन दे हत्थों ठगाए जांदे ने, ब्रह्मा भी ठगा गया। किसे होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भूल करदे ने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं करा मनुख दे विचारां दे च की है, मनुख दी सोचनी दे च की है, मनुख दे चिंतन दे च यादां दे च की है, मनुख दे विचारां दे च काम है, मनुख दे विचारां दे च लोभ है, मनुख दे विचारां दे च अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जांदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा दे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे तुहाडे जैसा कोई दानी नहीं, तुहाडे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करदे ने। कहिंदे ने ज्ञानी जी असी ना होईए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होईए तो स्कूल दे दरवाजे बंद हो जाण, असी ना होईए तो गुरुद्वारे का कम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा, तू मर के वेख, सब कुछ आंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलन गए, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलन गया। पर इसनू कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नू पट्ठे पा दे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझना है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है। यह भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतरमुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतरमुखी ओ ही हो सकेगा जो सुनदा है। तो सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है। मंजिल इको ही है, ठिकाणा इको है। साढ़े हिंदू वीर जाते ने मंदिरों के दर्शन करने लिए किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखा ते खड़ीए, वेखण ते खड़ीए, दर्शन ते खड़ीए। दर्शन करने ने वेखना, अखा के सामने जो कुछ होएगा अखा वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शना ते खड़ीए। अज एक मंदिर की कोठड़ी दे भगवान नू वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान का रूप दिखाई देवे। साधना वेखना है, दर्शन करने ने। साढ़े मुसलमान भरा जाते ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। कुरान की तलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, पढ़न ते खड़ी है। वेखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना इहदे वास्ते एकाग्रता चाहीदी है थोड़ी जिहा। सिख जांदे ने गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द। सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। वेखण नालों पढ़ना औखा है और पढ़न नालों सुनना औखा है, कठिन है। इस चक्कर च ना पैना कि असी इतने सारे बैठे हाँ, सारे सुन रहे हैं, कता ही नहीं। दो चारां तो ज्यादा कोई नहीं सुन रहा। सब अपने विचारां नूं सुन रहे हैं, सब अपनी सोचनी नूं सुन रहे हैं, सब अपनी यादां च महो अंदर जो फुरने चल रहे हैं, सब उन्हां नाल जुड़े हैं। कठिन है। अगर कोई सुने तो साहब कहने नानक भगता सदा विगार, सुनिए दुख पाप का नार। सुनदिया ही दुख नाश हो जाते, सुनदिया ही पाप नाश हो जाते, सुनदिया ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदिया ही गुरु की विचार अंदर प्रवेश करेगी, अंदरों अहंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे। सुनना ही तो औखा है, और सुन ओही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे। इधर भटकदा पे है, इधर भटकदा पे है, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, तो स्पष्ट है इहदा ध्यान भी भटक रहा है। इन्हें की सुनना है? सुनन लई ध्यान दी पूरी एकाग्रता चाहिदी है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी जब बोलन वाला इतनी उच्ची उच्ची बोल रहा है? तो कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। बिना ध्यान दी एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द दा अंदर प्रवेश होना कठिन है, और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगता सदा विगार, सुनिए दुख पाप का नाथ। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है, इतना पावन हो जाता है कि 68 तीर्थ भी उस तो सदके कीते जा सकते ने। सुनिए 68 का इशनान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मुंह दे राही अंदर प्रवेश कर दी है, वो पच के मिंज बन दिए, खून बन दिए, मांस बन दिए, शरीर की शक्ति बन दिए, तवानाई बन दिए, इंद्रियां दा बल बन दिए। गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र, नहीं तो कौन सुनता है? शौकिया लोकी अपने घर दे भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने कि जे सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकदा है, मित्र नूं सुन सकदा है, पत्नी नूं सुन सकदा है, पति नूं सुन सकदा है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता विनिमरता तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कदन तालमेल नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा। ताल तबला सुर ताल दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है? गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहिंदे ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसे दिन कीर्तन सुनदे आ किसे नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखिया कीर्तन दा रस ते किसे नूं विरले नूं ही आउंदा है, लोक सुरां दे आवाजां दे अगले दे रंग रूपे च या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जांदे ने, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोकां दी स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए, सच दी विचार फोकियां साखियां नहीं। और जिहड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी, उस दी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे? खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश करदे ने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। इति पहली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहत है, वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है, वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही, वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कभी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल, और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग, एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने, और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग, आवाज अलग, चाल ढाल, अगर रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नू जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नू लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने, तो एक जैसे ने कतई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दिच आवे भावे ना आवे, वह फर्क साड़े तौल दिच आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा दे च रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पाया, तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज सड़ी पकड़ दे, सड़ी समझ दे आ गए ने, इतने। इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे चने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है, घटता है, मिटता है। ये तिने नियम हर एक लागू ने, सूरज चंद तारिया भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, यह सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं, ते अपनी जवानी हंडा चुके, बुढ़ा हो गया। 40 लख टन वजन एक सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नु ही महापरले कहते हैं। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे हैं, भावें अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दौरान लग पाए, तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ, ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਅਨੇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖੇਲ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ, ਬਾਕੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖੇਲ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਫੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਪਏ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ। ਖੇਲ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਲ। ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨਫਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਬੁਢੇਪਾ ਇੱਕ ਖੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਖਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਨੇ ਕਾ ਤਹੱਯਲ ਲੇਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਤਾ ਹੁਆ ਪਾਓਗੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜੋ ਹੈ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਜਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਦ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। इस अनेकता विच जिहड़ा इक नू वेख लवे इक नू समझ लवे ओ पवित्र है। उसनू किसे नाल घिरना नहीं होवेगी किसे मुल्क नाल किसे जात नाल किसे व्यक्ति नाल किसे कौम नाल किसे धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वजेगी मंदिर नू वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागनगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलो लंघिया होई उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगा पैदा होणगियां भेद ते मिट गए उहनूं दिस पिया अनेकता दे अंदर इक है। अनेकता उसका खेल है वास्तविक वह एक है। सूरज एक है किरणा अनेक ने सागर एक है लहरा अनेक है। जिसनू लहरा नाल नफरत है उन्हों सागर नाल भी नफरत है। जिन्हों किरणा नाल नफरत है उन्हों सूरज नाल भी नफरत है। जिन्हों अनेकता नाल नफरत है उन्हों एक नाल भी घिरना है। उन्हों एक दी कोई समझ नहीं उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला एक वस्त बूझे तो होवे पाक बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नू समझ जाए तो पावन है पवित्र है ते जे नहीं समझया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध च एक सवैया उच्चारण किया कह के मैं समाप्ति करा एकाग्रता बख्शनी। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करदे ने हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते इक नू पढ़िया दो तीन चार पांच नहीं इक। सिर्फ इक नू पढ़िया ही नहीं मन विच भी इक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहंदे ने दुबदा ना पढ़ो मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो हर बिन आवर ना पूजो मड़ी मसान न जाई तृष्णा राच न पर घर जावा तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहिंदे ने हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो इक तुसी जीवन भर पढ़िया इक नो। सिर्फ पढ़िया ही नहीं मन विच वसाया इक नो। तैं पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछाणियो नैण बैण मोह इक इक दोए ठाए न जाणियो। थोड़ी अखां च भी इक है जिथे तक वेखदे हो इक नो। थोड़ी जबान ते भी इक है जिन्ने बोल बोलते हो उन्हां च इक प्रगट आउंदा है। अनेकता नहीं दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी इक थोड़े अखां दे च भी इक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे उसके व्यवहार तो उसके बोलन तो उसके वेखण तो उसकी तर्ज जिंदगी तो। और किस तरह हो सकता है गुरुद्वारे आन वाला भी अधार्मिक होवे हो सकता है मंदिर विच रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा उसके आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन विच निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहिंदे ने हे गुरु अमरदास थोड़ी रसना ते इक थोड़े नेत्रां दे चिक नैण बैण मोह इक इक दोए ठाए न जाने। तुसे इक तो बिना दूजे नू नहीं जानदे थानू एक ही एक दिखाई देंदा। सारियां किरणां दे इक्को ही सूरज दिखाई देंदा है थानू। सारी लहरां दे इक्को ही सागर दिखाई देंदा है थानू। सारी अनेकता दे इक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने सुपन इक पर तख इक इक समय लीने। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहिंदे हो इक दे च लीन रहिंदे हो पर जब तुसी सौ जांदे हो तुहानू सुपने भी इक दे ही आउंदे। तुसी सुपनियां दे च भी इक दे च लीन रहिंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था इक नाल जुड़ी हुई है थोड़ी स्वपन अवस्था भी इक नाल जुड़ी हुई है। सुपन इक पर तख इक इक समय लीने तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेण। ये सारे हिंद से जमा करने पैणगे जोड़ करना पड़ेगा। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेण तीस एक इकती पंच छत्ती ते पैंती इकहत्तर। हे गुरु अमरदास ये अवस्था थोड़ी इकहत्तर वरे की उम्र दे बनी। इकहत्तर साल की अवस्था दे ऐसा जीवन आप नसीब होया तीस एक अरपंच सिद्ध पैंतीस निखेण्यो इको जे लाख लखो अलक है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास कव भल भण तू एक लोड़े एक मने कवि भल पट कहिंदे ने हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा थानू एक दी लोड़ है तुसी एक नू मनदे हो एक नू वेखदे हो एक नू बोलदे हो एक नू पढ़दे हो और एक नू मन दे च वसाया थोड़ी जागृत अवस्था दे च एक थोड़ी स्वपन अवस्था दे च वी तुसी इस गल नू समझ लिया कि एक वस्तु बूझे तो होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना एक नू कोई समझ जाए एक नाल कोई जुड़ जाए ओही पवित्र है बाकी कोई पवित्र नहीं क्योंकि उन्हों सारिया लहरां दे सागर दिखाई देगा उन्हों सारिया किरणां दे सूरज दिखाई देगा उन्हों सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा उन्हों सारे पशु पक्षियां दे ईश्वर दिखाई देगा जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप ए विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया ए अवस्था जिसकी बन जाए ओही पावन है ओही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है अनेकता तेरा खेल है अनेकता तेरा तमाशा है ते बस मैं यही तमाशा देखन लई आया मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं। एक सूफी का कहना है जो हंस रहा है सो हंस रहेगा जो रो रहा है सो रो रहेगा सकूने कलब से खुदा खुदा कर जो कुछ के होना है सो हो रहेगा उसका तमाशा है इते हो वेगा तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसी अनेकता दे जिसनू एक दी समझ होवे एक दिसे एक रसना ते आ जाए एक हिरदे च बस जाए वो ते पावन है वो ते पवित्र है बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्तु बूझे तो होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना पाक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा पहला अखर एक एक तो गुरबाणी आरंभ होंदी है सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान करांदी है जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी ओही भगत ओही संत ओही फकीर ओही वली अल्लाह ओही अवतार ओही महापुरुष और ओही पावन ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस खंड की विचार सरवण करदे आ आप नू एक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए साहिब रहमत करन सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद बड़े टिकाओ नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नू जह सरवण कीता कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जह पेश करेगा साहिब रहमत करन इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
2: गुरबाणी शब्द कथा कीर्तन सुनन वास्ते सुनदे रहो रेडियो 1550 AM। भाई साहब संत सिंह जी मस्कीन भाई पिंदरपाल सिंह जी भाई ठाकर सिंह जी अते होर पंथक गुणी ज्ञानियां तों कथावां ते गुरसाखियां ते गुरबाणी सुनदे लई सुनिया करो 1550 AM। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Bod of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Bod, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBodGroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: Hi, yeah. So the Musia, baby. Yeah.
3: Mercy.